मैं दोएहा किन सिगा रोज मर रही थी बिपनार होए हाँ तीरु ताइर फिस में हा कुंत ने